0: ये कमरा जिसमें पंखा और बिस्तर हो और एक अच्छे स्कूल में दाखिला।
1: क्या?
0: मेरी बेटी के लिए।
1: मंजूर है।